अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

जाना रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इन्फॉर्मेटिव उजाला पिंधनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

एक बार नारद मुनि के कहने पर माँ पार्वती त्रिपुरारी भोलेनाथ जी से अमरनाथ की कथा सुनने की जिद करती हैं और कैलाशपति पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा में ले जाते हैं और कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ जाती है। भोले बाबा अमर कथा सुनाते रहते हैं और एक तोता उस अमर कथा को सुनता रहता है और बीच में हुंकारे भरता रहता है। भोले बाबा देखते हैं तो पार्वती माँ की आंख लगी हुई है, उन्हें गहरी नींद आई हुई है। भोलेनाथ सोचते हैं कि हुंकारे कौन भर रहा था। भगवान शिव ने एक तोते को उड़ते हुए तभी देखा, उन्हें समझते देर न लगी कि अमर कथा यही सुन रहा था। तो भोलेनाथ क्रोधित होकर तोते को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ देते हैं और तोता बेचारा अपने प्राण बचाने के लिए सूक्ष्मतम रूप बनाकर सत्यवती के गर्भ में चला जाता है। वही तोता सुखदेव मुनि कहलाए, जो आज भी अमर है। तो भक्तों सुनते हैं भोले

दिल कैसे नजरअंदाज कर दे उस एहसास को जो तुमने हमें दिया है। बेइंतहा खुशी देकर भी तुमने हमारा चैन, सुकून, आराम सब छीन लिया है।

Live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में।

कोई छोटा मोटा चोर उचक्का लगता है सब। पैसे रिवॉल्वर सब छोड़ के भाग गया डर के मारे। कुछ चीज मिसिंग है साहब।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

हमारे सभी सुनने वालों को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हो, मैं हूं सुभाष गोविंद। जहां तक की आवाज पहुंच रहे आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार हो, स्वागतम। हमेशा कहती रहा जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह, आप हर एक को हार्दिक से बधाई, तहे दिल से मुबारकबाद अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप हर एक की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। आज के प्रोग्राम में कुछ गाने हम आपको जरूर से सुनाएंगे, कुछ नए कुछ पुराने गाने लेकर हम अपने साथ आए हैं। तो जहां पर आप प्रोग्राम को सुनते होंगे आराम से बैठिए, या अभी तक आप लेटे हुए हैं तो लेटे रहिए। उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, तो चलिए प्रोग्राम में पहला गीत हम आप लोगों के लिए तैयार किया है और गाने वाले होंगे लता जी एंड किशोर कुमार।

0: ले चंदा ओ चंदा। और इसी तरह से गाना प्रोग्राम में आप लोग सुने दोस्तों। चलिए ये भी हो जाए।
1: क्या कहा?
0: कुछ नहीं।

Bizarre. किशोर एंड लता, फिल्म का नाम रामपुर का लक्ष्मण, एंड स्टेशन है उजाला रेडियो। लता जी एंड मुकेश, पत्थर की सनम।

वेल महबूब मेरे, जो तू नहीं तो कोई नहीं। पत्थर की सनम लता जी एंड मुकेश की आवाज में गाना को प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने दोस्तों।

और उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। आम्स्टरडाम शहर से प्रोग्राम को बनाया जा रहा है आप सभी के लिए। उजाला रेडियो का दफ्तर का तार की नंबर है 020-409-08-07। अगर आपको तार करना है तो दफ्तर के समय आप जरूर से तार करें।

वेल, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। और इसी तरह से गीत प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे। चलिए अब की बार जो गाना हम आपको सुनाने वाले हैं तो इस तरह से होंगे, लता जी और साथ देने वाला मोहम्मद रफी।

बाजा ओ साथिया ओ बेलिया। फिल्म का नाम कारवां और स्टेशन जो आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का। हर एक रोज हर एक दिन

और हम लोग के दफ्तर खोलने की समय है देखा जाए तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 10 बजे सुबह से दिन में 3 बजे तक और हर एक शनिवार को 10 बजे सुबह से लेकर शाम में 5 बजे तक। Opening tijd in kantooruren. Van maandag tot en met vrijdag van 10 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. En elke zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. Harik information aapko milega www.ujala.nl.

चलिए दोस्तों, प्रोग्राम में तो अब की बार फिर से प्रोग्राम में हम ला रहे हैं लता एंड किशोर कुमार को। और मैंने एक सपना।

आइए इसी तरह से गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, लता जी एंड किशोर कुमार, उजाला रेडियो। मैं हूं सुभाष, आप सभी को हम अपने प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए जो गाना है इस बार हम तैयार किए हैं और आपको हम सुनाना चाहते हैं, तो चलिए हम दोनों प्यार से बैठ करके सुनते हैं।

ये चार पल कम नहीं थे, कभी तुम न थे कभी हम न थे, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और जो गाने हम घुमा रहे हैं, ये आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी पसंद आते होंगे।

यो बॉय, चोरी चोरी जो तुम, इसे हम प्यार कहेंगे, इसे हम जरूर से प्यार कहेंगे। लता जी एंड मुकेश की आवाज में गाना को प्रोग्राम में आप लोग सुने। अब की जो गाना हमने तैयार करके रखे हैं, फिल्म का नाम होंगे साजन और गाना का बोल होंगे जिए तो जिए कैसे बिन आपके। और चलिए तो गाना हम आपको जरूर से सुना देते हैं। मिसाल, जिए तो जिए कैसे बिन आपके,

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

आप सभी को सुभाषी गोविंद का प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप हर एक को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबाद अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है आप हर एक की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। कुछ मिले जुले संगीत से हम आप लोगों को आज खिदमत करेंगे। तो हमारे प्यारे सुनने वालों दोस्तों, दिल लेके आ गया तेरी गलियों में, अब की बार जो गाना आप लोग सुनेंगे प्रोग्राम में, तो खास करके देखा जाए प्रोग्राम में हम ला रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। उदित नारायण एंड पैमला जैन होना चाहिए। दिल लेके आ गया तेरी गलियों में,

खूब गाना प्रोग्राम में आप लोग सुने। दिल लेके जान लेके तेरी गली में आ गया, उदित नारायण एंड पैमला जैन के आवाज में आप लोग सुने। फिल्म का नाम ना तुम जानो ना हम, उजाला का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। और अब की एक बहुत ही पुराना गीत हम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। गाने वाले होंगे मुकेश और साथ देने वाली होंगे शमशाद बेगम।

क्या गीत प्रोग्राम में अभी आप लोग सुनी, मैं भावरा तू है फूल, और गीत को गाने वाले करोड़ का दिल चुनर वाला हार्ट मिलेश माइटी मुकेश एंड शमशाद बेगम, फिल्म का नाम मेला, और संगीत से सजाए नौशाद, और इस गीत को तैयार किए शकील बाय द यूनियन, स्टेशन उजाला रेडियो। दोस्तों चलिए अब की बार तो प्रोग्राम में ला रहा हूं आशा जी को, और साथ देने वाला है महेंद्र कपूर।

आप लोग सुने दिन है बहार के आशा जी एंड महेंद्र कपूर, फिल्म का नाम वक्त और संगीत से सजाए पंडित रवि। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं और अब की बार जो गाना आप लोगों के लिए हमने तैयार किए हैं, गाने वाले होंगे अलका याग्निक और साथ देने वाले होंगे उदित नारायण।

बहुत ही खूबसूरत गीत प्रोग्राम में आप लोग सुने, दिल ने पुकारा जानम आ गए हम, अलका याग्निक एंड उदित नारायण, फिल्म का नाम ले चल अपने संग, स्टेशन है उजाला रेडियो। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार जो गाना हमने तैयार किया है और गाना इस तरह से आप लोग के लिए हम पेश करेंगे, जाने चमन शोला बदन, मोहम्मद रफी एंड शारदा, फिल्म का नाम गुमनाम।

शोला बदन और इसी तरह से मोहम्मद रफी एंड शारदा की आवाज में अब की बार जो गाना हम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और गाने वाले होंगे आशा जी एंड कुमार शानू से आप सुनिए चेहरा क्या देखते हो

सुने चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, आशा जी एन कुमार शानू, फिल्म का नाम सलामी, संगीत से सजाए थे नदीम एन शर्वन। एन आप लोग को जला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, स्टूडियो का तार की नंबर है 0203630808 और दफ्तर का तार की नंबर है 0204090807 कांतोर के समय। चलिए दोस्तों, अब की बार जो गाना हमने तैयार किया है हसीनों का पुजारी किशोर कुमार

कैलाश शायर हैं और इसी तरह से हसीन का पुजारी किशोर कुमार के आवाज में गाना को प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे। अब की बार प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं मुकेश एंड शारदा।

खूबसूरत गीत प्रोग्राम में आप लोग सुने चले जाना जरा जरा जरा सारा थेड़ो। और इसी तरह से करोड़ का दिल चरण वाला हार्टफिनिश माइट मुकेश एंड शारदा के अवंश में आप लोग गाना को सुन रहे थे। अब की बार जो गाना हमने प्रोग्राम में तैयार किए हैं गाने वाले होंगे देखा जाए तो हरिहरन एंड चित्रा के आवाज में सुनिए।

बहुत ही खूबसूरत गीत प्रोग्राम में आप लोग सुने। हम तुमसे न कुछ कह पाए, हरिहरन एंड चित्रा के वंस में आप लोग सुने। फिल्म का नाम जिद्दी, स्टेशन है उजाला रेडियो। तो चलिए दोस्तों, अब की बार प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ मिलेश्वर माइटी मुकेश से सुनिए ये गीत।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार द्वारका बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 90 साल के आयु में नई खंतखियार औत लड़कन सुशीला विद्या सीता बिसुन बॉयक और आनंद द्वारका के माँ रॉब लाब्रियर और सुनीता कालीचरण के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टरडम के फ्लीफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग जीवित में कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री जयदेव द्वारका जिन्हें लोग द कॉम के नाम से पहचानते थे और जो भी पहले हौसाखरे द्वारका के मालिक था इनकर विधवा थी और पहले सूरीनाम हौतन के निवासी। नीदरलैंड और सूरीनाम से सभी लड़कन द्वारका और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 90 साल के आयु में नई खंतखियार औत लड़कन सुशीला विद्या सीता बिसुन बॉयक और आनंद द्वारका के माँ रॉब लाब्रियर और सुनीता कालीचरण के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टरडम के फ्लीफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल शनिचर के दिन में 2:30 बजे मोरखन जात्रदा हालफ द्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में।

0: तेरा था।
1: और मृत्यु समाचार को प्रोग्राम में सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 90 साल की आयु में नीखंतक यार और स्वर्गीय पिता श्री कुंज बिहारी सरजू और स्वर्गीय माँ श्री राम प्यारी सरजू के बेटी भाइयों और बहनों सुलभा चांद नान मीन मीला इंदर और स्वर्गीय रुदि स्वर्गीय क्रीस और स्वर्गीय दत्त की बहन दो छोटकू की बड़की चार भौजी के ननद और सभी लड़कन के फूआ मौसी नानी और आजी अम्स्टर्डम के फ्लेफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे। स्वर्गीय श्री जयदेव द्वारका की विधवा थी। इन्हें लोग द कॉम के नाम से पहचानते थे और पहले हौत्साहर द्वारका के मालिक जो था। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध को 90 साल की आयु में नीखंतक यार और स्वर्गीय पिता श्री कुंज बिहारी सरजू और स्वर्गीय माँ श्री राम प्यारी सरजू के बेटी सभी भाइयों और बहनों सुलभा चांद नान मीन मीला इंदर स्वर्गीय रुदि स्वर्गीय क्रिस और स्वर्गीय दत्त की बहन

Weg 275 Amsterdam Oostdorp में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर उत्फार्थ फुरजोरखिंग परिवार द्वारका और परिवार सरजू के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का वही प्रोग्राम कॉफी चाय मिदा शो आज कुछ देर में शुरू होने वाला है. फनफ ए न्यू सेवन दे मैथ कॉफी चाय मिदा शो मैथ आनंद चंद्रिका सिंह और हमारे साथ ये प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं नतुलक मैथ हेल फेल टोरीज हेल फेल बातें हेल फेल समाचार एंड हेल फेल लाख ऑफ देस फ्राइडे zonnige vrijdagmiddag van vrijdag 19 juni. Toen had je ik hoe. Toen had je hier hamar hasad. Blijf luisteren. Abbe Hamaila.

उजाला रेडियो का वही प्रोग्राम कॉफी चाय मेरा शो आज कुछ देर में शुरू होने वाला है. फनफ ए न्यू सेवन द वे मैथ कॉफी चाय मेरा शो मैथ आनंद चंद्रिका सिंह और हमारे साथ

हैं उजाला रेडियो, उजाला रेडियो का कॉफी चाय मिल्क शो यहीं से शुरू किया जाता है। हमने आपसे वादा किए थे दोस्तों हम इन शो बिगिन एंड या वसेंदर हम लोग बाटी इस गर्मी गर्मी मौसम में ऐसे प्यार भरे गीत ठंडी ठंडी आवाज में हम आपके घर तक पहुंचाते हैं, आपके मोटर कार में, आप चाहे जहां पर है वार योग बहन, तू चाहे जहां बाटे तोर खातिर ये गाना हम चलाएला। उजाला कॉफी चाय मिदक शो यहां से शुरू हो गया है। मैं सिद्धि आनंद वर्कशाइन, ब्लाइफ रुस्तख, कालम रहिए, माँ की फोराल नहीं द्रुक, एक को बुन ना द्रुक माँ करिए, ब्लाइफ रुस्तख एंड ब्लाइफ फोराल ड्रिंकर, हेल फिल वाटर, वाटर, खानी पानी है, ना कोला पिए ऑफ सूतक दिन, नहीं खानी पानी, इस मेड अन फोल्डून।

नीले गगन पे तले अभी आपने सुने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। सुनने वालों मैं आपसे बता दूं, मैं वर्षाइन खैर बिरिदा तलमाल आल खहोर्ट, अगर ना सुनने बाटे दान इस दित त बरिख लास्ट बरिख आज के मौसम के हालात के बारे में। कोड ओरांजे इन लिम्बुर्ग वनवेगे फोर्से ओनवेर्स बुइन, दुस उ आवेगा एन वार दित अलमाल एंडिग हम ना जाने ला, मैं इन इल गफाल अमस्टरडम में तो मोई वेर हेगा, मैं फॉर द मेंस इन लिम्बुर्ग wees voorzichtig. Maar heb je shuru hoge hè? Ja, shuru hone wel hè. Onweersbuien. Na 24 uur zijn de eerste scheurtjes in broos akkoord tussen VS en de Iran al zichtbaar. Want Israël nasune hega. Katani aibi hega. Dus ja, dat zorgt er wel voor dat ka hoiga, ka na hoiga, niemand weet het.

0: अधूरी ना होना चाहिए, अधूरी ना होना चाहिए। यू मुनी फेयर से फनी मान वन तो दिनवा खराब हो जाएगा, तो दिलवा ना मानेगा, तो बेचैन रहिए, तो को चाहेंगे चैन मिल के, तो चाहे चैन मिल के, मत कोई दूरी चल जाए, दूरी रहे तो उसे असी मन फेयर फाइन इस वाई फाइन हाउ तो तू या तो तनी घबराहट से में रहिए, तू ना मोइसे सूतिए, तू दिन और रात ओके सोचिए
1: सबसे दूर हो गए।
0: दूरी ना होना चाहिए, दूरी ना होना चाहिए। यू मुनी फेयर सिम्फनी मान वन तो दिनवा खराब हो जाएगा, तो दिलवा ना मानेगा, तू बेचैन रहिए, तो को चाहेंगे चैन मिल के, तो चाहे चैन मिल के, मत कोई दूरी चल जाए, दूरी रहे तो उसे

Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl. info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो. Video helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl.

ये है उजाला रेडियो, उजाला रेडियो का कॉफी चाय मिनट शो यहीं से शुरू किया जाता है। हमने आपसे वादा किए थे दैट वी ऑन एनी सॉन्ग टू बिगिन एंड या वी साइन देयर। हम लोग बाटी इस गर्मी गर्मी मौसम में ऐसे प्यार भरे गीत ठंडी ठंडी आवाज में हम आपके घर तक पहुंचाते हैं, आपके मोटर कार में, आप चाहे जहां पर है वार योग बहन, तू चाहे जहां बाटे तोर खातिर ये गाना हम चलाएला। उजाला कॉफी चाय मेरा शो यहां से शुरू हो गया है। मैं सिद्धि आनंद वर्क चाइन ब्लाइफ रुस्तक कालम रहिए, कालम रहिए। माँ की फोराल नी द्रुक एक बुन न द्रुक माक करिए, ब्लाइफ रुस्तक एम ब्लाइफ फोराल ड्रिंक हेल फिल वाटर वाटर खनी पानी है ना, कोला पिए ऑफ सूत खदिंग नहीं खनी पानी इज मेड ऑफ ऑल।

नीले गगन पे तले, अभी आपने सुने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। सुनने वालों, मैं आपसे बता दूं, मैं वर्षाइनलिक हैब लिए दात अलमाल आल गहोर्ट, अगर ना सुनने बाटे, दान इस दित त बरिख, त लास्ट बरिख, आज के मौसम के हालात के बारे में, कोड ओरांजे इन लिम्बुर्ग वनवेगे फोर्से ओनवेर्सबुइन, दिस उ आवे हेगा, एन वार दित अलमाल एंडिग, हम ना जाने ला, मैं इन इल गफाल, आमस्टरडम में तो मोई वेर हेगा। मैं फॉर द मेंसे इन लिम्बुर्ग, wees voorzichtig. Maar heb je shuru hoge ja shuru hone wel hè onweersbuien. Na 24 uur zijn de eerste scheurtjes in broos akkoord tussen VS en de Iran al zichtbaar. Want Israël nasune hega. Katani aibi hega. Dus ja, dat zorgt er wel voor dat ka hoiga, kana hoiga, niemand weet het.

दूरी ना होना चाहिए, दूरी ना होना चाहिए, ये मुन्नी फेयर से फनी मान, वरना तो दिनवा खराब हो जाएगा, तो दिलवा ना मानेगा, तू बेचैन रही है, तो को चाहेगा चैन मिल के, तो चाहे चैन मिल के, कोई दूरी चल जाए, दूरी रहे तू उसे, असि मन फेयर फाइन इस वाई फाइन हाउ, तो तू या तो तनी घबराहट में रही है, तू ना मोह से सूती है, तू दिन और रात होके सोचिए,

0: उजाला रेडियो के साथ म्यूजिक नॉनस्टॉप फ्लो चलता रहे। हाँ, आप हमारे साथ दे रही हैं।
1: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आज़ादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसात अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराह भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: अही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ओतो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार द्वारका बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 90 साल के आयु में नई खंतखियार औत लड़कन सुशीला, विद्या, सीता, बिशुन, बॉयक और आनंद द्वारका के मां रॉब लाब्रियर और सुनीता कालीचरण के सास, सभी लड़कन के नानी आजी, पर नानी और पर आजी। अम्स्टरडम के फ्लीफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग जीवित में कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे, और जो कि स्वर्गीय श्री जयदेव द्वारका, जिन्हें लोग द कॉम के नाम से पहचानते थे, और जो भी पहले हौसाखरे द्वारका के मालिक था, इनकर विधवा थी और पहले सूरीनाम हौतन के निवासी। नीदरलैंड और सूरीनाम से सभी लड़कन द्वारका और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 90 साल के आयु में नई खंतखियार औत लड़कन सुशीला, विद्या, सीता, बिशुन, बॉयक और आनंद द्वारका के मां रॉब लाब्रियर और सुनीता कालीचरण के सास, सभी लड़कन के नानी आजी, पर नानी और पर आजी। अम्स्टरडम के फ्लीफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजो की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल शनिचर के दिन में 2:30 बजे मोरखन जात्रदाह हालफ द्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

0: तेरा था।
1: और मृत्यु समाचार को प्रोग्राम में सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 90 साल की आयु में नीखंतख यार और स्वर्गीय पिता श्री कुंज बिहारी सरजू और स्वर्गीय माँ श्री राम प्यारी सरजू के बेटी भाइयों और बहनों सुलभा चांद नान मीन मीला इंदर और स्वर्गीय रुदि स्वर्गीय क्रीस और स्वर्गीय दत्त की बहन दो छोटकू की बड़की चार भौजी के ननद और सभी लड़कन के फूआ मौसी नानी और आजी अम्स्टर्डम के फ्लीफो हाउस में विधवा रामकुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे। स्वर्गीय श्री जयदेव द्वारका की विधवा थी। इन्हें लोग द कॉम के नाम से पहचानते थे और पहले हौत्साहराय द्वारका के मालिक जो था। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध को 90 साल की आयु में नीखंतख यार और स्वर्गीय पिता श्री कुंज बिहारी सरजू और स्वर्गीय माँ श्री राम प्यारी सरजू के बेटी सभी भाइयों और बहनों सुलभा चांद नान मीन मीला इंदर स्वर्गीय रुदि स्वर्गीय क्रिस और स्वर्गीय दत्त की बहन दो छोटकू की बड़की चार भौजी के ननद सभी लड़कन के फूआ मौसी नानी और आजी अम्स्टर्डम के फ्लीफो हाउस में विधवा रामकुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल शनिचर के दिन में 2:30 बजे मोरखन जात्रदाह हलफ दरी किए जाएंगे। वैसखाड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग परिवार द्वारका और परिवार सरजू के दुख में शामिल है।

ब्रिंग दे रोटी मान, ब्रिंग दे रोटी, निशाद सुल्तान की आवाज में फ्रॉम द वेस्ट इंडीज और उजाला रेडियो पर आज का प्रोग्राम में पेश की गई है।

बलम होइगे गुलरी के फूल, इस गीत को तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन ये जानना चाहिए आपको कि इस गीत को गाई है 9 साल की बच्ची साक्षी सुखा, जिसका नाम है साक्षी सुखा नई खन यार औत। आप सुने और तुड़ुख नुनाडो वेस्ट इंडीज़।

और यूं ही रोने नहीं दूंगा, अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। फिल्म एनिमल का गीत को आप सुने। उजाला रेडियो पर सुनने वालों, एक और गीत

तू हाँ तू मानू मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। गायक किंग की आवाज में एक और गीत पेश है अब। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से निकाला हुआ

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: www.ujala.nl. Ujala Radio.
1: नमस्कार, अब यहीं से एक और प्रोग्राम पेश है खूबसूरत गीतों के साथ उजाला रेडियो पर, तू जाने है तो

उजाला रेडियो आपकी आवाज, आपके गीत और संगीत, आपका मन प्रिय रेडियो स्टेशन, ये सब मिलाकर बनती है उजाला रेडियो।

0: मना करे।
1: हम यहीं पर आपसे इस प्रोग्राम के साथ जुदा होंगे, बहुत जल्दी फिर मिलने के लिए आप ही का मन प्रिय उजाला रेडियो पर।

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

तू थाकी गयो फरी पर नहीं समझतो बेशरम। अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

ये है उजाला रेडियो, उजाला रेडियो का कॉफी चाय मिल्क शो यहीं से शुरू किया जाता है। हमने आपसे वादा किए थे दोस्तों हम इन न्यू शो बिगिन एंड या वैसे हम लोग बाटी इस गर्मी गर्मी मौसम में ऐसे प्यार भरे गीत ठंडी ठंडी आवाज में हम आपके घर तक पहुंचाते हैं, आपके मोटर कार में, आप चाहे जहां पर है वाह योग बहन तू चाहे जहां बाटे तोर खाती नहीं गनो हम चलाएला। उजाला कॉफी चाय मिदक शो यहां से शुरू हो गया है। मैं सिद्धि आनंद वर्क शाइन ब्लाइफ रुस्तक कालम रहिए माँ की फोराल नहीं द्रुक एक बुन न द्रुक माँ करिए ब्लाइफ रुस्तक एंड ब्लाइफ फोराल ड्रिंकें हेल फिल water, water. Kan niet pani, hè? Na cola pieën of zoetige dingen. Nee, kan niet pani. Is meer dan voldoende.

दूरी ना होना चाहिए, दूरी ना होना चाहिए, ये मुन्नी फेयर है फनी मान, वरना तो दिनवा खराब हो जाएगा, तो दिलवा ना मानेगा, तू बेचैन रहिए, तो को चाहेंगे चैन मिल के, तो चाहे चैन मिल के, मत कोई दूरी चल जाए, दूरी रहे तू उसे, असी मन फेयर फाइन इस वाई फाइन हाउ, तो तू या तो तनी घबराहट में रहिए, तू ना मोह से सोचिए, तू दिन और रात ओके सोचिए,

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।